नहीं पाई। जे सब मिलकर आखण पाही, वड्डा न होवै घाट न जाई। ना हो मरे न होवै सोग, दिंदा रहे न चुकै भोग।

जप तप संजम धर्म न कमाया सेवा साधना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती जाओ पई हमरी करो हाथ द रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा

आज संग रहे हैं। पूरण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम है साड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उभर आए, मरण काल का त्रास ने भर आए। हो जो सदा हमारे पछा, सरिया तुझ कर रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे, साहिब संत साहे प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुमहोपुरी चतुर्दश कंता। काल पाई ब्रह्मा बबधरा, काल पाई सब जू अवतरा। काल पाई कर विष्णु पर गाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सब कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताही हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो।

सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को शिव गुण सुख दियो सदरन को बल मोह बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस धूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संत ने दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के बट बट की जाने जब

एक रूप अनूप स्वरूप रंग भयो राव कहीं पुपा अंड जेरज सिद्ध जकीनी उत्पज खान बहोर रच दीनी

रूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार या सिख संग्रो दोष जेते उठ बत उत बाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तब शरणी परे तिनके दोष दुखता वह मरे पुरख जवन

राम कली महला तीजा नंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज से ती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्दों तंगा वो हरी के राग मन जिनी बसाया

कारण अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सुवारणा सब नागलना समर्थ स्वामी सो क्यों मनोविसारी कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले।

गुरप्रसाद, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भय, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी, सैभं, गुरप्रसाद, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, गुरु पातशाह जी कृपा दा सदका अज सवेर दे दीवान तक असी सिद्ध गोष्ठियां 11 पौड़ियां दी विचार कीती। इन्हां पौड़ियां दे अंदर चरपट नाथ ते लोहा रीपा शायद वह गोरखनाथ के चेलियां विच मुखी जोगी होंगे, उन्होंने सवाल किए हैं ते उन्हां सवालों के जवाब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बख्शिश की, जिन्हां दी विचार दास ने जिन्नी क गुरु ने मत दिती है उस तुच्छ मत दे नाल विचार सांझी कीती। हुण अगली जो बाणी है उहदे विच खुले सवाल ने।

मिटे न भरम की काई, मिटे न भरम की काई। तो आख्या जेडे मन दे पिछे चलते ने वो दिन च कई बारी मरते ने ते कई बारी जमते ने, वो ता एक जगह टिकी नहीं सकते। मनमुख बिनतै आवे जाए, मनमुख बिनतै आवे जाए। नानक गुरमुख साच समाए, नानक गुरमुख साच समाए। साच दे चचे नूं सियारी है, वह सच विच समा जांदा, उहदी हर किरिया विचों सच प्रगट होंदा। अज असीं सिमरन दीआं जुगतियां पुछदे हां, सिमरन दीआं क्लासां भी लगदियां ने, बड़िया बड़िया सभा सुसायटियां इस उद्दम च लगियां। पर जो मैनू गुरु अमरदास जी ने समझाया, उन्हें कहा सिमरन तो बड़ा सौखा। तुसीं आखोगे इन्ना सौखा दसो, फिर गुरु अमरदास जी फरमाते ने, पै विच बहस है पै रहे, पै विच बहस है पै रहे।

जोग अर ज्ञान ध्यान एक निमख ना कीमत जाना तुम ही नायक तुम है शत्रपत तुम पूर रहे भगवाना पामु दान संत सेवा हर नानक सद कुर्बाना सार महला पंजवा मेरा मन हीत आए प्रियरंगा विसरयो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा रहाओ हर सेवो हर हृदय बसाओ हर पाया सतसंगा ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रियो अपना गुरबस कर दीना भोगो भोगन संगा निरपौ भय नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा सारंग महला पंजवा हर जियो के दर्शन को कुर्बानी बचन नाद मेरे श्रवण हो पूरे देहा प्रिय अंक सुमानी रहाओ छूटर ते गुर की सुहागन हर पायो सुगुड़ सुजानी जेहे घर में बैसन नहीं पावत सो थान मिलियो बासानी उनके बास आयो भगत बचल जिन राखी आन संतानी कहो नानक हर संग मन मानिया सब चूकी कान लुकानी सारंग महला पंजवा अब मेरो पंचा ते संग टूटा दर्शन देख पे मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाओ बिखम थान बहुत बहुत हरिया अनक रात सुरूटा बिखम गार कर पहुंचे नाही संत सानत भय लूटा बहुत खजाने मेरे पाले परिया अमोल लाल खूटा जन नानक प्रभ कृपा तारी तौ मन में हर रस कूटा सारंग महला पंजवा अब मेरो ठाकर स्यों मन लीना प्राण दान गुर पूरे दिया उर्जायो ज्यों जल मीना रहाओ काम क्रोध लोभ मद मत सर एह अर्प सगल दान

ना कहो नानक मैं सहज घर पाया हर भगत भंडार खजीना सारंग महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तार है सुटह संघार निमुख कृपा ते कोट ब्रह्मांड उदार है रहाओ करह अरदास बहुत बेनंती निमुख निमुख समार है हो कृपाल दीन दुख भंजन हाथ दे निस्तार है क्या ये कूपत बपरे कही है कहो ए किसनो मार है राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हार है सारग महला पंजवा अब मोहे तन पायो हर नामा पय अचिंत त्रिशन सब बुझी है एहो लिखियो लेख मथामा रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी

आन बापार बनज जो करिए है तेते दुख कहामा। गोविंद भजन के निरभय व्यापारी हर रास नानक राम नामा। सार महला पंजवा मेरा मन मिस्त लगे प्रय बोला गुरबाह पकड़ प्रभ सेवा लाए। सद दयाल हर ढोला रहाओ प्रभ तू ठाकुर सर्ब प्रित पालक। मोहे कलत्तर सहत सब गोला मान तान सब तू है एक नाम तेरा मैं बोला। जे तख्त बसाल है तो दास तुम्हारे कात बढ़ावे है के तक बोला। जन नानक के प्रभ पुरख बधाते मेरे ठाकुर अगह अतोला। सार महला पंजवा रतना राम कहत गुण सोहं एक निमख पाए समावे देख चरित मन मोहं रहाओ। जिस सुने मन हुए रहस्यत हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो। बाण आई प्रभ तोहं किल विख गए मन निर्मल होई है गुर काटे माया द्रोहं। कहो नानक मैं सो प्रभ पाया कर्ण कारण समरथोहं। सारंग महला पंजवा नैनो देखियो चलत तमाशा सब हूं दूर सब हूं ते नेर अगम अगम घट वासा रहाओ। अपूल ना पूलै लिखियो ना चलावे मता ना करे पचासा खिन मह साज सुवार बना है भगत वछल गुणतासा। अंध कूप मह दीपक बलियो गुर हृदय कियो परगासा। कहो नानक दर्स पेख सुख पाया सब पूरन होई आसा। सार महला पंजवा चरण है गोविंद मार्ग सुहावा आन मार्ग जीता किस ताई है ते तो ही दुख हावा रहाओ। नेत्र पनीत पये दर्श पेखे हस्त पनीत टहलावा हृदय पनीत हृदय हर बसेओ मस्त पनीत संत पूरावा। सर्ब निधान नाम हर हर कै जिस कर्म लिखिया तिन पावा। जन नानक कहो गुरु पूरा भेटियो सुख सहजे आनंद बिहावा। सार महला पंजवा त्यायो अंत बार नाम सखा जह मात पिता सुत भाई ना पहुंचे तहां तहां तू रखा रहाओ। अंध कूप ग्रह मह तिन सिमरियो जिस मस्तक लेख लिखा खुले बंधन मुक्त गुर कीनी सब तू है तू ही दिखा। अमृत नाम पिया मन तृप्तिया अगाए रसन चखा। कहो नानक सुख सहज मैं पाया गुर लाही सगल तिखा। सार महला पंजवा गुर मिले ऐसे प्रभु ते आया भयो कृपाल दयाल दुख भंजन लगे ना ताती बाया रहाओ। जेते सास सास हम लेते तेते ही गुण गाया निमख न बिसरे करी न बिसरे सद संगे जत जाया। हो बल बल बल बल चरण कमल को बल बल गुर दरसाया। कहो नानक काहू परवाहा जो सुख सागर में पाया। सार महला पंजवा मेरा मन शब्द लगो गुर मीठा खुल्यो कर्म पयो परगासा। कट कट हर हर दीठा रहाओ पार ब्रह्म आजोनी संभव सर्ब थान कट बीठा। पयो प्राप्त अमृत नामा बाल बाल प्रभ चरणीठा। सत संगत कीरेण मुख लागी किए सगल तीर्थ मजनीठा। कहो नानक रंग चलूल पए है हर रंग ना लह मजीठा। सार महला पंजवा हर हर नाम दियो गुर साथे निमख बचन प्रभ ही अरे बसेओ सगल भूख मेरी लाथे रहाओ। कृपा निधान गुण नायक ठाकुर सुख समूह सब नाथे
एक आस मोहे तेरी स्वामी और द्वितीया आस बराथे नैन तृप्तासे देख दर्शावा गुर कर धारे मेरे माथे कहो नानक मैं अतुल सुख पाया जन्म मरण पहला थे सार महला पंजवा रे मूड़े आन काहे कत जाई संग मनोहर अमृत है रे पूल पूल देख खाई रहा प्रभ सुंदर चतुर अनूप बधाते तिस स्यो रुच नहीं राई मोहन स्यो बावर मन मोहयो झूठ ठगौरी पाई भयो दयाल कृपाल दुख हरता संपन स्यो बन आई सगल निदान करै मह पाई कहो नानक जोत समाई सारू महला पंजवा वं प्रिय प्रीत चीत पहलरिया जो तौ बचन दियो मेरे सतगुर तो मैं साज सिंगरिया रहाऊ हम भूल है तुम सदा अपूला हम पतत तुम पतत उधरिया हम नीच बिरख तुम मैलागर लाज संग संग बसरिया तुम गंभीर तीर उपकारी हम क्या बपरे

दिन सुतन परवाना सफल ते करी संजोग सहावे सतगुर संग ज्ञाना रहाओ तन सुभाग तन सुहागा तन देत जिन माना एहो तन तुमरा सब ग्रहो तन तुमरा हियो कियो करवाना कोट लाख राज सुख पाई एक निमख पेख दृष्टाना जो कहो मुखो सेवक एह बैसी है सुख नानक अंत ना जाना सारंग महला पंजवा अब मोरो सहसा दुख गया और अपाव सगल त्याग छोड़े सतगुर शरण पया रहाऊ सर्ब सिद्ध कार्य सब सवरे अहंग रोग सगल ही खया कोट पराध चिन्मह खो पई है गुरमेल हर हर कहया पंच दास गुरवसगत कीने मन निश्चल निर्भया आए ना जावे ना कत ही डोले फिर नानक राजया सारंग महला पंजवा प्रभ मेरो इते उत सदा सहाई मन मोहन मेरे जी को प्यारो कमल कहां गुण।

आई जैसे मात पिताई तिस बिन निमख नहीं रह सकी है बिसरना कब हूं जाई कहो नानक मिल संत संगत ते मगन पए लिवलाई सारंग महला पंजवा अपना मीत स्वामी गाई है आस न अवर काहू की जय सुखदाता प्रभ त्याई रहाउ सुख मंगल कल्याण जिसह कर तिस ही सरणी पाई है तिसह त्याग मनुख जे सेव हो तो लाज लोन होए जाई है एक ओत पकड़ी ठाकुर की गुर मेल मत बुद्ध पाई है गुण निधान नानक प्रभ मिलिया सगल चुकी मोहताई है सारंग महला पंजवा ओत सतानी प्रभ जियो मेरे दृष्ट न लियावो अवर काहू को मान महत प्रभ तेरे रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने काड लिया बिख केरे अमृत नाम औखद मुख दीनो जाए पया गुर पैरे कवन उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दाते रे कात सिलक जो अपना कीनो नानक सुख कनेर सारी महला पंजवा प्रभ सिमरत दुख बनासी पयो कृपाल जी सुखदाता होई सगल खलासी रहाओ अवर न को सूजै प्रभ बिन कहो को किस पह जासी ज्यो जान हो त्यो राखो ठाकुर सब किस तुम ही पासी हाथ दे राखे प्रभ अपने सद जीवन अबनासी कहो नानक मन अनंद भया है काटी जम की फासी सारंग महला पंजवा मेरो मन जत कत तुझ सुमार है हम बारक दीन पिता प्रभ मेरे ज्यो जान है त्यो पार है रहाओ जब भूखो तब भोजन मांगे अघाए सुख सघार है तब अरोग जब तुम संग बसतो छुटकत हुए रवार है कमन बसेरो दास दासन को थापेओ थापन हार है नाम न बिसरे तब जीवन पाई है बिनती नानक एह सार है सारंग महला पंजवा मन ते पै पौ दूर परायो लाल दयाल गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रहाओ गुर बचनात कमात कृपाते बहुर न कतहु तायो रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वचल ग्रह पायो नाद बनोद कोड आनंदा सहजे सहज सुमायो करना आप कराम ने आपे कहो नानक आप आपायो सारि महला पंजवा अमृत नाम मन है आधारो जिन दिया तिस कह कुर्बान गुरपूरे नमस्कारो रहाओ बूझी तृष्णा सहज सुहेला काम क्रोध बिख जारो आए ना जाए बसै एह ठाहर जह आसन निरंकारो एक प्रगट एक गुप्ता एक तुंदुकारो आदमा दे अंत प्रभ सोई कहो नानक साच बीचारो सारि महला पंजवा बिन प्रभ रहन ना जाए करी सर्ब सुख ताहू कै पूरन जा कै सुख है हरी रहाओ मंगल रूप प्राण जीवन तन सिमरत आनंद कना वड समरथ सदा सद संगे गुण रसना कमल पना थान पवित्रा मान पवित्रा पवित्र सुनन कहन हारे कहो नानक ते पवन पवित्रा जा मह संत तुम्हारे सारि महला पंजवा रसना जपती तू ही मात गर्भ तुम ही प्रतपालक मृत मंडल एक तू ही रहाओ तुम्हें पिता तुम ही फुन माता तुम्हें मीत हित प्राता

ते हरेउ सुहाले तरेउ जैसे बासा मास देत चाटली देवनहार बसारेउ अंदले ज्यो सफरी उदर पर है बह हाटली साद बकार बकार झूठ रस जह जानो तह पीर बाटली कहो नानक समझ रे इयाने आज काल खुले तेरी गांठली सार महला पंजवा गुरजीओ संग तुहारे जाने हो कोट जोध ओआ की बात ना पुछी है ता दरगाह भी मान्यो रहाओ कमल मूल प्राणी का कही है कमल रूप दृष्टान्यो ज्योत प्रगास पई माटी संग दलाब दे बखान्यो तुम ते सेव तुम ते जप तापा तुम ते तत पछान्यो कर मस्तक धर कटी जेवरी नानक दास दसान्यो सारी महला पंजवा हर हर दियो सेवक को नाम मानस काको बपरो पहाई जाको राखा राम रहाओ आप महाजन आपे पंचा आप सेवक कै काम आपे सगले दूत बदारे ठाकुर अंतर जाम आपे पात राखी सेवक की आप की ओ बंधान आद जगाद सेवक की राखै नानक को प्रभ जान सार महला पंजवा तू मेरे मीत सखा हर प्राण मन तन जियो पिंड सब तुमरा एहो तन सीतो तुमरे तान रहाओ तुम ही दिए अनक प्रकारा तुम ही दिए मान सदा सदा तुम

जन का संग पाईऐ वड भागी नानक संतन कै कुर्बान सारू महला पंजवा करहु गत दयाल संतो मोरी तुम समरथ कारण करना टूटी तुम ही जोरी रहाओ जन्म जन्म के बिखरी तुम तारे समत संग तुम्हारे पाई अनक जोन भ्रमते प्रभ बिसरत सास सास हर गाई जो जो संग मिले साधु कै ते पतत पनीता कहो नानक जाके वड भागा तिन जन्म पदार्थ जीता सारंग महला पंजवा ठाकुर बिनती करन जाने आयो सर्ब सुख आनंद सहज रस सुनत तुहारो नायो रहाओ कृपा निधान सुख के सागर जस सब मैं जा को छायो संत संग रा

आठ पहर दर्शन संतन का सुख नानक के उपायो सारू महला पंजवा जाकी राम नाम लिव लागी सजन सुरदा सुहेला सहजे सो कहिए बड भागी रहाओ रहत विकार अल्प माया ते हम बुद्ध बिख त्यागी दर्श प्यास आस एक कह की ते कही है प्रिय पागी अचिंत सोए जागन उठ बैसन अचिंत हस्त बैरागी कहो नानक जिन जगत ठगाना सो माया हर जन ठागी सारू महला पंजवा अब जन ऊपर को ना पुक।

भर पाण मथुरा किछ भेद नहीं गुरु अर्जन पर तख हर पाण मथुरा किछ भेद नहीं गुरु अर्जन पर तख हर

श्री दुर्दर्श ध्यान श्री दुर शब्द ज्ञान शस्त्र स्नाह पंच दूत ब

पावन पद से किए जिन भीतर महिमा कथन न जाए। निर्भो भय सगल भय खोए गोविंद चरण होताई नानक जत गावे।

नयांत अंत न जप क्या मन मंत अंत न जप किता कारु अंत न जप पर वारु अंत कारण किते बिललाही ताकि अंत न पाए जाहि एहि अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता होए बड़ा साहेब ऊंचा थाऊं ऊंचे ऊपर ऊंचा नाऊं ए बड़ ऊंचा होवै कोई तसूचे को जाने सोए जे बड़े आप जाने आप नानक नदरी कर मिंदात बहुता कर्म लिखे न जाए बड़ा दाता दिल ना समाए किते मंगह जोद अपार किते अगणत नहीं विचार किते खप टाइम बेकार किते लै लै मुकर पाहे किते मूर्ख खाही खाहे किते दूबो सदमार हे पिदात तेरी दातार बंद खलासी पाणे होए हो राख न सकै कोए जे को खाए को आखण पाए हो जाने जे तियां मुंह खाए आपे जाने आपे दे आखे हे से पे गई गए जिसनो बख्शे सिफत सलाह नानक बादशाही बादशाह मुल गुण मुल व्यापार मुल व्यापारी मुल भंडार मुल आवहे मुल लै जाए अमुल पाए मुला समाहे मुल धर्म मुल दीवान मुल दुल मुल प्रवान मुल बख्शीस मुल निशान अमुल कर्म मुल फरमान अमुलो मुल आख न जाई आख आख रही लिबलाई आख वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करें वक्यान आख है ब्रह्म आख अंध आख है गोपी तय गोविंद आख है ईश्वर आख सिद्ध आख है कीते कीते बुद्ध आख है दानव आख देव आख है सुर नर मुंजन सेव किते आख है आखण पाही किते गह गह उठ उठ उठ उठ जाहे ते किते और करे दाख न सके गई गे जेवड पावे तेवड होए नानक जाने साचा सोए जे को आख है बोल विगाड़ दान लिखी असर गावा रंगवार सो दार केहा सो कर केहा जित मैं सर्व संभाले वाजे नाद अनेक संखा किते वावनारी केते राग परिसों कहिया न केते गावन हारी गावे तुहन पौन पाणी बसंत गावे राजा करम लवारी।

क्षत्रियं के ब्रह्म स्वरूप के अनुपम रूप के आदि देव के आप भेव के चतुरंग विहीन के एकाधीन के रोजिर जा कर हे मरहा कै के पाक बेअब है के गैबुल गैब है के अफबुल गुना है के शान शाह के कारण को नंद है के रोजी दे है के राज करीम है के कर्म करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वतर माने हैं के सर्वतर धान्य है के सर्वतर गौन है के सर्वतर पौन है के सर्वतर देश है के सर्वतर भेष है के सर्वतर काल है के सर्वतर पाल है के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर गाज है के सर्वतर राज है के सर्वतर शोक है के सर्वतर भोख है के सर्वतर प्राण है के सर्वतर प्राण है के सर्वतर देश है के सर्वतर पेश है के सर्वतर मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वतर जापे आएंगे सर्वतर थापे आएंगे सर्वतर पान आएंगे सर्वतर मान आएंगे सर्वं कलिम आएंगे ब्रह्म भीम आएंगे अकल राम है के साहेब कलाम है के हुसन और वजू है तमाम अंदर जू है हमेशा सलाम है श्री गर्म दाम है हमेशा सलाम है श्री गर्म दाम है गनी मुल सकता गरीबल बरासता बलंदर मकाना जमीन जमाना है तमीजल तमाम मर जोल नदाना है हरी बल अजीमा रिजा के यकीना है अनेक उल तरंग है बेदा पांग है अजीजल नवाज है गनी मुल खराज है निरोक्त स्वरूप है धर्मोक्त भूत है पर भुगत प्रवाह है सुजुग सुधा है सदा गुण स्वरूप है बेदी अनूप है समाज सुपराज है सदा सर्व साज है समाज सर्व सलाम है सदा बल काम है निर्वास रूप है गाद रूप है अंगाद रूप है नास रूप है नंगी नाम है त्रिपंगी त्रिकाम है त्रिवर्ग त्रिवाद्य गंज अगाधे नमो सर्व माने सम नमो सर शुभंग सर्वभाग्यु सर्वान रागे त्रिपुग स्वरूप है सजा सुधा नरक प्रणास है प्रतिकूल प्रवास है निरुक्त प्रवाह सदा सदाए निरुक्त प्रवाह है सदा सदाए विभुग स्वरूप प्रचोद नूप है निरुक्त सदाए विभुग प्रवाह अनाउक्त स्वरूप है प्रचोद अनूप है जाजरी छंद अपना बेघर बेघर चाचरी छंद अपांगा नांगा बेखा लेखा पर मैं कर्मा नाद जुगा जय पै भूता दूसरा नास दास दंद बंद है अभगत है प्रगत अनास है प्रकाशन चंद सुनंत रखा देखा देखा पा अलेखा बेखा घटा है गाय समय का मनीला नाद अनत जात जात है चरप छंद प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गांता सर्वंग छाता सर्वंग जाता सर्वंग हरता सर्वंग करता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता प्रसावल शांत था प्रसाद नम नाशिष आगाश रूप निर्वाह भूते नंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले एक नृभंगी स्वरूप सर्वंगी रूप नमो नरकनाशी सदैव प्रकाशे नंगंग स्वरूप भंगंग भूते परमाथंग परमाथि सदा सर्वसाथे आगाध स्वरूप निर्वाद भूते नंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे निरभंगी स्वरूप सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते नृसाकंग श्रीग मितोमी कहे सदैव प्रभाय जय जाय भगवती छंद तव प्रसाद के जहर जूर है के हाजर हजूर है मेसल सलाम है समाज लगलाम है के शब्द आ गए के उसल चरा गए के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी रहता है कि राज रहा है ग्रीमल कमाल है कोशल जमाल है ग्रीमल खराज है ग्रीमल नवाज है हरीफल सिकन है रासल पकान है कलंक प्रणास है समातल निवास है अगंजल ग्रीमर जय ग्रीम है सुनो समातल सुनवा में सवल काम है रवास रूप है।

केतलंग प्रकाश है मित्र सुभाष है गठित रूप है मित्र भूत है मित्र बधाए के आदम बढ़वाए केतलंग नांगंग मित्र पांग है मद बार शांत दग प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण बधाम हर भरे गांजु हर नपुर पांजु अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंडु भर नर मंडो अनुपवनाशु मुन मन प्रकाशु गुणगन प्रणाम जल फल मधाम अंशु जयांग आसन पांग उपमा पारगत मित उदार जल थल महंत महामांडो दिशे पांडु जल थल महंत दिशे अंत अनुपवनाश त्रैत तर तुराश आजान बाह कैसदाह ओंकार आदि कस ओंकार आदि कथनीय नाद खलखंड ख्याल गुरुवर काल कर गर्भनाम जरनाम आंश जिगाद जिजन बादन जंजगादन रंज बादन टुट भंडारण ठट पार आठ धर्म त्रीठ कर्म आण ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद तव प्रसाद करुणालय है हर काल्य है खलखंडन है मैं मंडन है जगदीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है सदकतरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपाश है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगदीश्वर है ब्रह्मांड है खलखंड है बरते पर है करुणा कर है जप जप दप दप है कृता कृत मृत मृत है मृत मृत करुणा कृत है कृता कृत धरणी धृत है अकृता कृत मृत मृत है मृत मृत है धरणी धृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत मृत मृत है जप कृत मृत मृत है नरनायक है कलकायक है विश्वंबर है करुणालय निर्भनायक है सर्व पायक है पव पंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्व करत है करते कर है अर्तार है परमात्मा है सर्वात्मा है परमात्मा है सर्वात्मा है आत्म वास है जस के जस है भुजंग प्रयाद शंभ नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्र नमो राज राज्य नमो इंद्र इंद्र नमो अंधकारी नमो तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्यान नमो युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र नाद भूते अलंकार रूपे अलंकार अलंक नमो आसासे नमो वाग भंगे भंगी स्वरूपे अरंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक श्री शांत अजय अलय पह वह पुआ जू अनाश गास गांज पांज अलख बल लेख अपेख अनाम काम काट नाथे परमाथे योनि मोनि न रागे न रंगे न रूपे न रेखे कर्मंग भरमंग गंजे लेखे भुजंग प्रयात छंद अगंज अगंज अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमास्तल प्रणामे समास्तल प्रणासी अगंजल नामे समास्तल निवासी निरकामंग बभूते समाज सद स्वरूपे कर्मंग प्रणासी सधर्मंग बभूते सदा सचदानंद सदरंग प्रणासी ग्रीमुल कनंदा समाज तुलवासी अजायब बभूते अंग जायब गनी मैं हरि अंकरी अंकरी मुल रे मैं जत जगर भरती जत जत्र जगर भरती जत जगर पाले जत जगर गाले चतर जगर भारती चतर जगर भुगते सुजाम पौ सुभंग सर्वदासर जुगते दुकालिंग प्रणासी दयालिंग स्वरूप अंग संगे अभंगंग भूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी गरीम गुरंदास मातल निवासी अजायब भूते गजायब गनी मैं हरि अंग करियं करिम रहि मैं चतर चक्र भारती चतर जगर भुगते सुजाम पौ सुभंग सर्वदासर जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अभंगं विभूते
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਈਏ ਏਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਾਵਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸੁਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਫਿਰੋ ਕਰ ਜੋ ਜਤੀ ਕੇ ਸੂਰ ਸਰਾਧਨ ਸੁਧ ਸੁਧਾ ਦੇ ਗਲ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਤ ਕੋ ਨਾ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤੀ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਉ ਤੇ ਗਰਤੀ ਬਿਨੇ ਗਰਤੀ ਕੇ ਮਾਤੇ ਮਦੰਗ ਜਯ ਹਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪਤ ਰੰਗ ਸਰੰਗ ਸਵਾਰੇ ਕੋਟ ਰੰਗ ਰੰਗ ਸ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੇ ਗੁਣ ਕੋ ਜਾਤ ਨਵਾਰੀ ਭਾਰੀ ਪਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪਰੀ ਬਦ ਨਿਆਵਸੀ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੁਕਾਨ ਪਾਏ ਭੂਪਤ ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੀ ਪਾਏ ਪਦਾਰੀ ਜੀਤ ਫਰੈ ਸਭ ਦੇਸ ਦੁਸਾਨ ਕੋ ਬਾਜ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਨਗਾਰੀ ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਹਿੰਸਤ ਹੈ ਹਜਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰੇ ਭੂਤ ਭਵੈ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ ਹੈ ਕੌਣ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜਵਨ ਭੂਪਤ ਹੈ ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸੁਧਾਰੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦੈਦਮ ਦਾਨ ਸੁਸੰਜਮ ਨੇਵਨ ਏਕ ਵਸੇਖਾ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਦੇਵ ਪੁਰਾਣ ਜਮੀਨ ਜਵਾਨ ਸਵਾਨ ਕਪੇਖਾ ਹੈ ਪੌਣ ਆਹਾਰ ਜਦੀਆ ਤਾਰ ਸਭ ਸਭ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਦੇਖਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜਵਨ ਭੂਪਦੇ ਕ੍ਰਤੀ ਬਨੇ ਕਨਲ ਦੇਖਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਸਵਾਦ ਰੰਤ ਸੁਸਾਸਨਾਦ ਲੈਂਗੇ ਬਾਰੀ ਗਵਾਨ ਪਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਬਰੁਦ ਬੰਖਾ ਨਹਾ ਲੈਂਗੇ ਤੋਰ ਹਰੀ ਮਰੋਰ ਆਸਨ ਮਾਤਮ ਦੰਗਰ ਮਾਨ ਮਲੇਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਭਸਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾਵੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਜਹਾਨ ਨਿਦਾਨ ਚਲੈਂਗੇ ਵੀਰ ਪਾਰ ਵੱਡੇ ਵਰਿਆਰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਪਛਈਆ ਦੋਸਤ ਦੇ ਸਮਲਿੰਦ ਵਾਸਨ ਮਾਤ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲਈਆ ਗਾੜੀ ਗੜਾਨ ਕੋ ਤੋੜਨ ਹਾਰ ਸੋ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜਗ ਚਾਰ ਲਵਈਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾਇਕ ਜਾਚ ਕਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦਵਈਆ ਦਾਨ ਦੇਵ ਨੰਦਨ ਸਾਜਰ ਬੁੱਧ ਵਿਖ ਪਵਾਂ ਜਪੇ ਜੀਵ ਜਿੱਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਸਲਮੈ ਪਾਲੀ ਪਰਮ ਸਭ ਦਪੇਂਗੇ ਬੁਨ ਵਰਤਾ ਪੁਨ ਪੌੜੇ ਮਾੜ ਜੈਦਨ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੰਜ ਖਪੇਂਗੇ ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰ ਜਗ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਜਪੇਂਗੇ ਮਾਨ ਵਿੰਦਰ ਗਜਿੰਦਰ ਨਿਰਾਤਰਪ ਨਿਰਾਤਰਪ ਜੰਦ ਗੁਰਾਏ ਕਰੇਂਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਸੰਸਜਵਾਦ ਅੰਤ ਪਸੈਜਮ ਬਾਦ ਪਰਾਂਗੇ ਜੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਕੇ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਾਂਗੇ ਜੇ ਨਾਰ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਕੇ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਧਰਾਂਗੇ ਮਾਂ ਕਹਾਂ ਪਏ ਜੋ ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਜੋ ਦਊ ਲੋਚਨ ਮੁੰਡ ਰਹੋ ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਜੋ ਦਊ ਲੋਚਨ ਮੁੰਡ ਕੇ ਬੈਠੋ ਵਕਤ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ ਨਹਾਤ ਫਿਰ ਲਈ ਸਾਸ ਮੰਦਰਾਂ ਲੋਕ ਹੈ ਪੁਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ ਬਾਸ ਕੀ ਉਸ ਬੈਸ ਬਾਸ ਕੀ ਉਸ ਬੈਸ ਗਏ ਬਾਸ ਕੀ ਉਹ ਵਿਖਿਆਨ ਤੋਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਐਸੇ ਸਵੈਰੂ ਦਾਇਓ ਸਾਚ ਕਹੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਉਹ ਨਿਬਰਾ ਪਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਤਰ ਸਰ ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਕਰੇ ਲਟਕਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਵਚ ਦਿਸਾ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਪਛਾ ਕੋ ਸੀਸ ਨਵਾਇਓ ਕਹੂ ਬਦਾਨ ਕੋ ਪੂਜਿਤ ਹੈ ਪਾਸ ਕਹੂ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਤਾਇਓ ਕੂਰ ਕਰਿਆ ਉਰ ਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਹੂ ਬਦਾਨ ਕੋ ਪੂਜਿਤ ਹੈ ਪਾਸ ਕਹੂ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਤਾਇਓ ਕੂਰ ਕਰਿਆ ਔਰ ਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੀਂ ਕਵਿ ਵਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਸ ਦੇ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਜਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਬ ਚਰਨ ਨਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ ਹਮਰੇ ਦੋਸ਼ਟ ਸਭ ਤੁਮ ਕਾਬਹੁ ਆਪ ਹਾਸ ਦੇ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵਹੁ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾ ਸੇਵ ਸਿੱਖ ਸਭ ਹੈ ਕਰਤਾਰਾ ਮੋਹ ਰੱਖਿਆ ਨਿਜ ਕਰਦੇ ਕਰੇ ਆਏ ਸਭ ਬੈਰ ਨਕੋ ਆਸ ਸੰਗਰੇ ਆਏ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੇ ਪਿਆਸਾ ਤੁਮੈਂ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਤਿਆਉ ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੋ ਸੁ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ
सेवक सेख हमारे दारी है, जन जन सदर हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे भरे आए, मरण काल का त्रास ने भरे आए, पूजो सदा हमारे बच्चा, सरिया सोजू करो रचा, रख ले उम्र रखनारे, साहेब संत साहे प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बपधरा, काल पाए शिव जुग अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जो की सब कियो, वेदराज ब्रह्मा जो थियो, जवन काल सब लोक सवार, नमस्कार राय हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देवदान जसने बजायो, आदंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार दसी को हमारी, सगल प्रजा से नाम सवारी, सेवकन को सेवकन रख दियो, सदन को बल मबल कियो, खटखट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चिट्ठी दे गुंजर सूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछान है, कर करके पपट की जान है, जाऊ कर करा कर सारा, केवल सया प्रथम संसारा, एका रूपानुप स्वरूपा, रंग भयोराव कहीं भूपा, अंडज जेरज असिधज गेनी, उत्पुर खान बहोर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवा बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए जम्पव, आज जुगा स्वरूप सुजम्पव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख भार सिख संगरो, दोष जी दे उठव तो पाता, सकल मलेश करो रण काता, जी हस्तो तब सरणी परे, जनके दोष्ट दुखता वह मरी, पुरख जवन भग परे तिहारे, जनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं, रक्षा हुई ताय सब काला, दृष्ट रिष्ट ठर तत् काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहरे हो, ताके दाव धन कमो हरे हो, रिद सिद कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्व सकै न कोई, एक बार जन तुम संभारा, काल फास दे ताय उबारा, जिन नर नाम तिहारु कहा, दारिद दोष्ट दोग तिरहा, खड़ गिरत मसरण तिहारी, आ बहादल यो बारी, सर्व ठार मोह सहाई, दोष्ट दोग ते लेव बचाई, खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हादल वारी, सर्वठार मोह सहाई, दोष दोग ते ले बचाई, खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हादल वारी, सर्वठार मोह सहाई, दोष दोग ते ले बचाई, राम कली महला तीजा आनंद, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया, सहज सेती मन वजियां बधाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गा बणाइयां, शब्द गाव हरि के रामन जी निवसाया, कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाम रहो तू मन मेरे दुख, सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सवारना, सबना गला सम्राट स्वामी सो कवन विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे, करता तेरा सब कुछ है, जिस दे सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनका मन वसया, बाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रहे, साचा नाम राधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सा गवाइया, कर जान तक मन वसया, जिन इच्छा सा बुझाइया, सदा कुरबान कीता बेटो, जिस दियां आए वडियाइयां, कहे नानक गुण संतो, शब्द रूप प्यारो, सचा नाम राधारो, वाजे पंच शब्द कर सभा गए, कर सभा गए शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वास कीते, काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया।

0: कर आसन देखो चाओ।
1: दाता करता है आप तू तुस देवै करे पसाओ। तू जानो ही सब से दिलै से जिंद कवाओ। कर आसन दिठो चाओ।

0: सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करणे सर विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा फुरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तो दिया से लख करोड़ सचे सब तान सचे सब जोर सची तेरी सिफत सची सलाह सची तेरी कुदरत सची पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे तो कच निकच महला पहला वड़ी वड्याई जा वड्डा नाओ वड़ी वड्याई जा सच न्याओ वड़ी वड्याई जा नैचर साओ वड़ी वड्याई जाने लाओ वड़ी वड्याई दूजे सब भाओ वड़ी वड्याई जा पुछना दार वड़ी वड्याई जा आपे आप नानक कारना कथनी जाए
1: ईता करना सर्व जाय मना ए जग सच्चे की है कोठली सच्चे का विश्वास इकना हुक्म समायले इकना हुक्म करे बिना इकना पाने कड ले इकना माया बिच निवास ये भी आखना जाप जे सियाने रास नानक गुरमुख जानिए जाको आप

0: मन अंधे जन मंगवाया, मन अंधे जन मंगवाया।
1: ओड़िया पीने भोग भोगै होए पसमड़ भौ सदाया, वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल घट चलाया।

0: सतगुरु के बिदाता को नहीं सब सतगुर मिले सच पाया जिन पिछों आप दबा जन सचो सच बजाया जन सचो सच बजाया
1: थोड़ी नजर करेगी अपनी नजर सतगुरु पाया यो जियो बोले जन्म परमिया तो सतगुरु सब सुनाया सतगुरु जीवदाता को नहीं सब सुने लोग सुबाया।

0: सर्वेश करेंदिया को रहे न परिये पाये को रहे न परिये पाये
1: बौड़ी ना उतरा निरंकार है ना लइए नरक ना जाइए जियो पिंड साथ इसका देखा जे आख गवाई है जे लोड़े चंगा अपना कर पुनो नहीं सदाई है जे जरवाना परहरे जरवे

पड़ पड़ गड्डी लगी है, पड़ पड़ पंगे साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डिए खात। पढ़िए जेते बरस बस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते यार जा, पढ़िए जेते सास। नानक लिखा एक गल, पुरह मैं चखना झाक मोहला पहला। लिख लिख पढ़िया तीता कढ़िया, बोतीत भरिया ते तो लवे।

कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार, कूड़ सोना, कूड़ रूपा, कूड़ पहननहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप अपार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, खप होए खार, कूड़ कूड़े नहीं हो लगा विसरिया करतार।

0: प्यार, मूर्ख पंडित हिकमत हुंजत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार, जति सदावे जुत ना जाने छड दहे घर बार, सब को पूरा आपे होवे घट ना कोई आखे, पत परवाना पिछे पाइए
1: नानक तोलिया जापे।

0: सिमल रुख सराय राया तीर गद मुच ओ जया व्यास कर जाय नरासे कित पलस के फुल बक बजे कम ना आवे पत मिटत नहीं नानका गुण सियाइया तत साव को निवे आपको पर को निवे ना कोए कर तराजू तो लिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूना निवे जो हंसा मृगा ये क्या थी है जर देख सुधे जाए महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिल पूज से बगल समादन मुख झूठ विभूखण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गल माला तिलक लिलाटन दोए धोती बसर कपाटन जे जानस ब्रह्म कर्म
1: सो कितने चो कर्म को नानक ने चो त्यागे बिन सतगुर बाट न

0: कोई गावे राजी नादी बेदी वो पांच कार नहीं हर हर पीजे राम राजे जिना अंतर कात बकार है तिना रुए क्या कीजे हर करता सब किसियान दास रूह हथ दीजे जिना नानक गुरमुख हिरदा सुध है हर भक्त हर लीजे हिरदा सुध है।
1: लोक महला पहला गो ब्राह्मण को कर लावो गोबर करना जाई धोती सिक्का तैजा माली धन मलेशा खाई अंतर पूजा पड़क ते संजम तुरका भाई छोडी ले पखंडा नाम लिए जाए तरंदा मोहल्ला पहला मान थाने करे निवास छोड़ी भगवान तिन कर ताग तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद उना वे आवे ओई साध पूरी रास पूरा व्यापार पूर बोल करे आहार सर्म धर्म का डेरा दूर नानक पूर रहया भरपूर मथे टिका तेर तो टीक खाई अब श्री जगत खसाई नील बासर पैरे हुए प्रवान मदेश धान लै पूजे प्राण अपाकिया का पुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देख चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कुड़े यार मत पिटे वे मत पिटे वन साडा फिटे तन फिटे फेड करेण मन जूठे चुनी भ्रेण को नानक सच ध्याई है सुच हो गए
0: सच पाइये पौड़ी चिटे अंदर सब को बिख नदरी हेठ चलाएंदा आपे देवड़िया आपे कर्म कराएंदा बड़ो बड़ा बड़मेदनी सिरे सिर चंदे लाएंदा नदरो पठी जे करे सुल्ताना काव कराएंदा दर मंगन पेख न पाएंदा दर मंगन पेख न पाएंदा। जालो ऐसी रीत जित मैं प्यारा बिसरे नान

0: लोक महला दूजा एक नहीं दात आप से जो पाइए नान साकर मात सैन तुठे जो मिले महला दूजा
1: नहीं चक्री जितको खसम ना जाए नानक सेवक अन्य जैसे ती खसम समाए पौड़ी नानक अंत

मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्त्र भगत साध की शरण नानक जप जप जीव हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्द कोह है मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को ढाव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेख विकारा बिन बुझे मिथ्या सब भय सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आर जा साज बिना कह होवत सोचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ता कह दुर्गंध बिन सिमरन बिन रैन बिरथा बिहाय मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम जो कृपन के निराक नाम धन धन तेजन जे कट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ रहत अवर कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुख गंड लावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर भेख न काहू भीन अवर उपदेश आप न करै आवत जावत जन्मै मरै जिस कै अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आप है माने आप है आप करत निबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाव स्यान सगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस भाव है तिस लय लड़ लाए थान तनंदर रहया समाय सो सेवक जिस कृपा करे निमक निमक जप नानक हरि श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे जय प्रसाद सुगंधत तन लाव है तिसको सिमरत परम गत पाव है जय प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै ध्याए सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पै सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याई है ध्यावन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावै तिसै त्याग कत अगर लुभाव है जय प्रसाद सुख तेज सोई जय मन आठ पहरता का जस गावी जय जय प्रसाद तु सब को मान मुक्ता को जस रसन बखाने जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावै नानक पद से सी घर जावे जय प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जय प्रसाद तिर ओला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रवता कै जय प्रसाद तुझको ना पहुँचे मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानकता की भगत करे जय प्रसाद आभूषण पहरे जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जय प्रसाद अश्व हस्त असवारी मन तिस प्रभ कौ कबहू न बिसारी जय प्रसाद बाग मिलक धना राष्ट्रोय प्रभ अपने मना जिन तेरे मन बंत बनाई उठत बैठत सद तिसै ध्याई तिसै ध्याए जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखै जय प्रसाद करह पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद तू आचार व्योहारी तिस प्रभ कौ सास सास चितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह जय प्रसाद सुन कर्णनाद जय प्रसाद पेख है बिस्माद जय प्रसाद बोल है अमृत रसना जय प्रसाद सुख सह जय बसना जय प्रसाद हस्त कर चल है जय प्रसाद संपूर्ण फल है जय प्रसाद परम गत पाव है जय प्रसाद सुख सहज समाव है ऐसा प्रभ त्याग अवर कट लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ कौ मूल न मन हो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता को जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिस हजान मन सदा हजूरे जय प्रसाद

तन बसै मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सर्वनिधान प्रभ तेरी माया, आपहु कछु न किन्हु लया। जित जित लाव हो तित लगे हर नाथ, नानक किनकै कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सुमुक्ता होए। सुन मिता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा अष्टपदी। साध कै संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली कोत। साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगटै सुज्ञान। साध कै संग दूजै प्रभ नीरा, साध संग सब होत नबेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी। साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा पर फुलै। साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग नकत हूं तावै, साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब नीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस्यों नहीं बैर, साध कै संग न बीगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हौताप, साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बडाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध कै संग न कब हूं तावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बस अगोचर रहै, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थान उचै, साधु कै संग महल पहुँचै। साध कै संग दृढ़ सर धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै। साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म। साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध कै संग कलोकत है, साध कै संग नरक पर हरै। साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साध कै संग ना बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिदवसै, नानक उदरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट जीठा। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा भेद न जानह, जेता सुनह तेता बखियाने। साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा

एक सिदन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदि। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक जैसे सूर सर्व कौ शोक। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राज रंक कौ लागै तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक ज्यों बसुद्धा को खोदै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यों पाव।

जैसे तर ऊपर आकाश ब्रह्मज्ञान के मित्र सत्र समान ब्रह्मज्ञान के नहीं अभिमान ब्रह्मज्ञान ऊंच दे ऊंचा मन अपने है सब से नीचा ब्रह्मज्ञानी से जन भये नानक दिन प्रभ आप करे ब्रह्मज्ञानी सगल कीना आत्मरस ब्रह्मज्ञानी कीना ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्मज्ञानी ते कछ बुरा न पाया ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्मज्ञानी एक उपर्यास ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी का गरीबी समाहा ब्रह्मज्ञानी पर उपकार उमाहा ब्रह्मज्ञानी का नहीं तंदा ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंधा ब्रह्मज्ञानी का होए सो पला ब्रह्मज्ञानी सो फल फला ब्रह्मज्ञानी संग सब उधार।

आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंबुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रवाप ब्रह्म ज्ञानी का बड प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड भागी पाइय ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अधाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी।

नानको अपरस सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श परत्रय रूप न पेख नेत्र साधु की टहल संत संग हेत कर्ण न सुन काहू किंदा सब ते जान आपस को मंदा गुर प्रसाद दुखिया पर हरय मन की बासना मन ते टरय इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस वैष्ण सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्ण की माया ते होय भिन्न कर्म करत होवे निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहो फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग्राचे मन तनंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ावर नाम जपावे नानक ओह वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसा सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवे तिस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अरपै बिशन प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन पर बुद्ध राम नाम आत्म सोदय राम नाम सार रस पीवे उस पंडित कै उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे वेद पुराण सिमृत बुझ है मूल सुख मह जान अस्तूल चौ वरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौ वरना में जपे को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावे जन कोय कर कृपा अंतर उतार पस प्रेत मुग्ध पाथर कौतार सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कितै ना पाईया धर्म नानक दिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसका मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नगरी आया दास दसन तन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुक्त सो कहावे तैसा हर्ख तैसा उस सोग सदा आनंद तह नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी भिख खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक ओह पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर रख है तैसा तन नाओ आपे करन करावन जोग प्रभ पावे सोई पुन होग पसरे आप होए अनंत तरंग।

लोक उस्तत कर है अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रवृति बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होय पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन पर में उदासी।

तित तित लगना नानक करते की जाना करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्व पाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सशिर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूत तार नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत अर्थास्त्र कई कोट किए रतन समुद्र कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चरजीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख किन्नर पिसाच कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच सब ते नेरा सब होते दूर नानक आप अलिप्त रहया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुरग निवासी कई कोट जन्म है जीव है मरे कई कोट बोजोनी फिरे कई कोट बैठ सही खाए कई कोट काले थक पाए कई कोट किए धनवंत कई कोट माया मह चिंत जय जय पाणा तह तह राखे नानक सब किच प्रभ कै हाथे कई कोट पहे बैरागी राम नाम संकटन निवलागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म मह पार ब्रह्म लानते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिन को मिलो प्रभ अविनाश कई कोट मांग है सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन।

कई बार पसरे उपासार, सदा सदा एक एकंकार। कई कोट कीने बहुपात, प्रभ ते होए प्रभ नाहि समात। ताका अंत न जान को, आपे आप नानक प्रभ सोए। कई को

अमर पहे सद सद ही जीव है, कई कोट नाम गुण गाव है, आत्मरस सुख सहज समाव है, अपने जन को सास सास सुमारे, नानक हुए परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नहीं को, नानक तिस बलहारण जल थल महियल सोए अतपरी। करण करावन करना जोग जो तिस भावै सोई होग, खिन मह था पुथा पनहारा अंत नहीं किस पारा वारा, हुक्मे तार अधर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई नानक सब मह रहया समाई, प्रभ भावै मानुख गत पावै प्रभ भावै तां पात्र त्रावै, प्रभ भावै दिन सास तिराखै प्रभ भावै तां हर गुण भाखै, प्रभ भावै तां पत ते उधारै आप करै आपन विचारै, दोहां सिरियां का आप स्वामी खेलै बिगसै अंतर जानी, जो भावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर नावै, कहो मनुख ते क्या होयावै जो तिस भावै सोई करावै, इस कै हाथ होए तां सब किछले जो तिस भावै सोई करे, अनजानत बिख्या मह रचै जे जानत आपन आप बचै, परमे भूला दह दस्तावै निमख माही चार कुंठ फिर आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले, फिन महनीच कीट को राज पार ब्रह्म ग्रीव निवाज, जा का दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दह दुष्प्रगटावै, जा को अपनी करै बख्शीस ता का लेखा न गणै जगदीश, जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बणत आप बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका बल नाही इस हाथ कर्म करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस भावै सोई फुन थियो, कबहू ऊंच नीच में बसै कबहू सोग हर्ष रंग हसै, कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू खूब आकाश पयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार, कबहू नृत्य करै बहु पात कबहू सोय रहै दिन रात, कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्व की हो तरवाल, कबहू होए बह बड राजा कबहू भेखारी नीच का साजा, कबहू अपकीर्त में आवै कबहू भला भला कहावै, ज्यो प्रवरा खैत ही रहै गुर प्रसाद नानक सच कहै, कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मोन धारी लावै ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक जोन भरमै भरमिया, नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावै ज्यो प्रभ भावै तिवै नचावै, जो तिस भावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोय, कबहू साध संगत एह पावै उस स्थान ते बोर न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रत एक रंग सदा बसह पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान। श्लोक

नानक गर्भ गले अष्टपदे जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जान मैं जो बनवंत सो होवत विस्ताका जंत आपस पाओ कर्म बंत कहावे जन्म मरे बहु जोन प्रमावे धन भूम का जो कर गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे नानकी हां मुक्त आगे सुख पावे धनवंता होय कर गरबावे तृण समान कछ संग न जावे बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस पल भीतर ताका होय विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन मह होय जाए भस्मंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटा बिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हम तारे शर्म पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म निंद्रवै हर दरगह को कैसे गवै आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकी निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए जब ए जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग नहीं चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हाँ छूटे सहस खटे लख कौ उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग दिखिया के करे न तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजे स्वप्न मनोरथ बिरथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए बड भागी किसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो कुछ कीनो स्वप्न रंग सब ते दूर सब हूँ कै संग बुझा देखे करे विवेक आप है एक आप है अनेक मरे न बिन स आवे न जाए नानक सद ही रहया समाए आप उपदेश समझे आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो आपन विस्तार सब कछ उसका ओ करने हार उसते भिन्न कहो किछ होय थान तनंतर एक सोए अपने चलित आप करने हार कौतुक करे रंग आपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने वखियानी सच सच सच सब कीना कोट मधे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अति सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरवन बखाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन।

संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी। संत कै दुखन आर जा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक न पाए, संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हते को रखै न कोय, संत कै दुखन थान प्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी तरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग जोन लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा में जलै, संत कै दुखन सब को चलै, संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच नीच आए, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावै ता ओए भी गत पाए। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसै का नहीं मित, संत के दुखी को दान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा भिकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुख के टरे, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावे ता ले मिलाए, संत का दुखी अध बीच से टूटै, संत का दुखी कितै काज ना पहुँचै, संत के दुखी को ध्यान परमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर के सोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाहीं, आपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवन राखन हार, नानक संत पावै तै ले उबार, संत का दुखी यों बिल्लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजा, ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै अकेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस पावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजा न आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दोख न पृष्ठ कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया किरत न मिट कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसके ओह करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करहो दिन रात, तिसह त्याग हो सास गिरात, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोठिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे, बड़ भागी नान।

सास सास सुमारे, अपने जनका पर्दा ढाके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पत्र रखे, ताकि गत में

ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मैं जन, जन मैं पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम। सैस सियानप लया न जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए। सफल दर्शन पेख पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। भेट तसंग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे। सुनकर बचन करन आघाने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुरा क्यों जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेख होए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए।

वो न पहुंचत प्राणी, अग्न अगोचर सब निर्बानी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाए। अनक भगत बंदन नित करहे, चरण कमल हृदय सिमरहे, सद बलिहारी सतगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एह हर रस पावै जन कोय, अमृत पीवै अमृत सो होय, उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाकै मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सत उपदेश सेवक कौ दे, मोह माया कै संग न लेप, मन मह राखै हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भरम मोह दुख तहते नासे। तपत माहे ठांड वरताई, अनंद भया दुख नाठे भाई, जन्म मरण के मिते अंधेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे, भौ चूका निर्भौ हे वसे, सगल ब्याध मन ते खै नसे। जिसका सातिन कृपा धारी, साध संग जप नाम मुरारी, थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस सरवन। निर्गुण आप सरगुण धियो ही, कला तहार जिन सगली मोही, अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए।

नानक बलिहारी। श्लोक साथ न चाले बिन भजन, दिखिया सगली चार, हर हर नाम कमावन, नानक एह धन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर उपाव सब मीत बिसार हो, चरण कमल हृदय में उरतार हो, तरन कारण सो प्रभ सिमरथ, दृढ़ कर गह हो नाम हर वथ, इहो धन संच हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस रख हो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे, जिस धन को चार कुंठ उठताव है, सो धन हर सेवा ते पाव है, जिस सुख को नित बाचह मीत, सो सुख साधु संग प्रीत, जिस शोभा को करह भली करनी, सा शोभा भज हर की सरणी, अंक उपावे रोग न जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए, सर्व निधान मह हर नाम निधान, जप नानक दरगह परवान, मन प्रबोधो हर कहनाई, दह दिस तावत आवैठाए, ता को बिघ्न न लागे कोए, जा कर दह बसै हर सोए, कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख।

होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनक उपाव न छूटन हारे सिमरत शास्त्र भेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंचत नानक फल पाए संग न चालस तेरा तना तू क्या लपटा है मूर्ख मना सुत मीत कुटुंब अर बनता इन ते कहो तुम कवन सनाता राज रंग माया विस्तार इन ते कहो कवन छुटकार अस हस्ते रथ असवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझै नाम बिगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तू लेह आने भगत बिना बहु डूबे स्याने हर की भगत करहो मन

अपनी भक्ति लाए। अष्टपदी जात जनजात प्रवदान कर कृपा देव हो हर नाम। साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास प्रभु तुम्हें त्यावो। चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नितनीत। एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभु सार। प्रभु की दृष्टि महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोय। जिन चाख्या से जन तृप्ता ने पूर्ण पुरुख नहीं डोलाने। सुभर परे प्रेम रस रंग उपजा चाओ साध कै संग। परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अनगिन लिवलाग। बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होए दयाल सेवक कीनो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया। इच पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहा सत्संग हजूरी। जिसका साथ तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल न पान। सो क्यों बिसरै जे किया जाने। सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया। सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरै जे अग्न मह राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ है जन्म जन्म का टूटा गांड है। गुर पूरे तत् है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो यो काम आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो आप जप हो अवरह नाम जपाव हो। भगत पाए त्रिया संसार बिन भक्ति तन होती छार। सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नास नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ मन तन अंतर इही सुआओ। नेत्र हो पेख दर्त सुख होए मन बिकसै साध चरण धोए। भगत जना कह मन तन रंग बिरला को पावै संग। एक बस्त दीजे करमया गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए। प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत वच्छल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल। आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत। हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए। अनक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई। बहु भोजन का

फिर जात। अष्टपति, जब अकार यो कशना दृष्टेता, पाप पुन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग कमात, जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हर्ष शोक कहो किसे व्यापत, जब अपन आप आकार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत परम, अपन खेल आप वर्ती जा, नानक करना हार न दूजा, जब होवत प्रभु केवल तनी, तब बंद मुक्त कहो किस को गनी, जब एक हर अग्न पार, तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए, तब शिव सतत कहो कित ठाए, जब आप है आप अपनी ज्योत धरे, तब कवन निड्र कवन कत डरे, अपने चलत आत करने हार, नानक ठाकुर अग्न अपार, अब नासी सुख अपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहाँ बिनाशन, जब पूर्ण करता प्रभु सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए, जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, आपन आप ही अचरजा, नानक आपन रूप आप ही उपरजा, जह निर्मल पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता, जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौमान कौन अभिमान, जह स्वरूप केवल जगदीश, तह शल सिद्र लगत कह कीत, जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किसे भूत कवन तृप्तावै, करण करावन करना हार, नानक करते का नाही सुमार, जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई, जह सर्व कला आप है परवीन, तह वेद देव कहाँ को चीन, जब आपन आप उतार है, तो सगन अपसगन

आप। यह अचल अचेद अभेद समाया उहां किसै व्यापत माया, आप उसको आपह आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश। जह एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता। जह आपन आप पतियारा तह कौन कथा कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आप उसको आप है पहुँचा। जय आप रचयो प्रपंच अकार त्यों गुण में कीनों विस्तार। पाप पुण्य तह पई।

उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुहाओ आठ पहर प्रभु देखो नेरा मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा सुनो उपदेश हृदय बसाव हो मन इच्छे नानक फल पाव हो हलत पलत दोय लेहो सवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन बस है तिस साच परीखिया मन तन नाम जपहो लिवलाए दुख दर्द मन ते पाओ जाए सच व्यापार करहो व्यापारी दरगह निभ है खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहर न आवह जाहे तिसते दूर कहाँ को जाए उबरै राखन हार त्याए निर्भउ जपै।

उदरत श्रेष्ठ, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसै सो होत निहाल, ताकै निकट न आवत काल, अमर भये अमरा पद पाया, साध संग नानक हर ध्याया।

ताकि गत मित कहीं न जाए, दूसर होए तसो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुरप्रसाद नानक एह जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। ओह धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जनाया, जिस प्रसाद सब जग तराया। जन आवन का एह सुआओ, जन कै संग चित आवै नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जा का नाओ। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। सास सास सिमरह गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। आस नित त्यागो तरंग, संत जना की धूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अग्न सागर तरहो। हर धन के भर लेहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। नरक निवार उदार हो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो। चित जित वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन, अमलीक लाल एह रत्न। संत कुमावत होत उधार, आप तरह लोक है निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजय। प्रगटे गोपाल महान कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे। शरण जोग सुन शरणि आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए। मिट गए बैर भय सबरेन, अमृत

राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निधि खेप हमारे प्रभ कियो सत करो संत मीत सावधान एकाग्र चित सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बहुर न होवे आवन जान हर धन खात चलै जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नवनिध बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत्कर वेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख तने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपै मन कोए सब जुग मह ताकि गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ जीत जन्म मरण ता का दुख निवारै दुलभ दे।

सचिव बादशाह जी की पावन पवित्र खासूरी अंदर सुबाई मान गुरु सवारी सत संगी जनों